दिखाई जन जन तू पतली कमर तू ही क्या हाल बफेन उस पे सिस्टम रावल ले तो तू काहे साइकिल बहन कच कच काटे मोर पागल मन चाहे भाग तू कैलाली बाजार चाहे मुक्त पूत नर के सजन तू मोर हो आंख नजर।